0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

0: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्द्र मसाला।
4: After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
4: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टेन, अनरिटन। एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लीड द कॉन्वर्सेशन एट द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 टू डीकोड द शिफ्ट्स, रीड्रॉ पॉसिबिलिटीज। NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
1: कौन देखेगा फिर फिल्में?
2: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
3: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
4: ITW presents NDTV Yuva 2026. This is a world in transition. Uncertain. Unpredictable. Volatile.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi. After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. The course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
6: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
7: कौन देखेगा फिर फिल्में?
8: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
9: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
5: ITW presents NDTV Yuva 2026. The sharpest global voices decode a world between orders. Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, and the NDTV World Summit, a world between orders. 22nd and 23rd October, only on NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट। Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियल मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Meetha या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
5: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस, डीकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। डॉक्टर स्वर्णिम वागले, जनरल डेविड पेट्रियस, स्वामी सर्वप्रियानंदा, माइक वॉल्श, निकोलस बक्स, एंड द एनडीटीवी वर्ल्ड समिट, अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, 22nd and 23rd October, only on NDTV.

0: आओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
1: कौन देखेगा फिर फिल्में?
2: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
3: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
4: ITW presents NDTV Yuva 2026. This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
5: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
6: Senco se mera nata saalon purana hai. Ye mere liye bas ek brand nahi hai, ye hai ek legacy.
7: You know, designs kitne hain, lakh se bhi zyada doors.
8: Aur sare hain BIS Hallmark certified. खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
9: एक परिवार, अटूट भरोसा।
10: Across the country,
4: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: वक्त के साथ कदम मिलाकर सैनिकों ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए पर बिना अपने रूट्स को भूले।
3: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
4: एंड सैनिको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
5: एक परिवार अटूट भरोसा।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
2: यू नो डिजाइंस कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर,
3: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
4: एक परिवार अटूट भरोसा।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: bloc protests, with sources citing resentment over the Congress's unilateral approach. Rahul Gandhi has reportedly assured Uddhav of inclusion in future protests. However, the Thackeray faction will stay away from today's protest meeting and delegation scheduled to meet with the president.
1: चौथा दिन आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, आखिरकार क्या राष्ट्रपति समय मिला आप लोगों को या आप जाएंगे प्रदर्शन करते हुए आगे?
2: देखिए, जो पार्टी तय करे, अभी हम लोग तो जाएंगे और उसके बाद जैसा पार्टी तय करे, जो पार्टी तय करेगी वो कर लेंगे।
1: एक और खबर आ रही है, कई दल जो हैं वो नाराज हैं इस बात से कि कांग्रेस पार्टी ने अंतिम समय पे उनको आने के लिए निमंत्रित किया। यूबीटी की तरफ से खबर आ रही है कि लास्ट मोमेंट पे जो है इनवाइट किया गया, इसीलिए संजय राउत यहाँ पे नहीं है, उद्धव ठाकरे यहाँ पे नहीं है, शरद पवार यहाँ पे नहीं है, तो कई दलों के जो नेता हैं वो भी आज शामिल नहीं हो रहे। तो क्या कांग्रेस एकला चलो की राह पे चल रही है या कुछ है, मतभेद हो रहा है?
2: नहीं, कोई मतभेद नहीं है, सबके कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है, सब पार्टियों से हैं और सब लोग रोज साथ चल रहे हैं।
0: All right, with that, time for us to slip into a short break. Coming up on the other side, a key result day in Tamil Nadu with counting underway in two constituencies, TVK leading in both seats.

0: और प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: 5 आवर्स टू गो फॉर ऑल ऑफ डीकेएस ड्रीम्स टू कम ट्रू आई एम गोना ट्राई एंड गेट मोर इनटू द क्राउड्स हियर इज द पिक्चर सिद्धरमैया एनडीटीवी स्टैंड्स कंप्लीटली एंगेज्ड विद कर्नाटका
2: हाई रेट चेक द ऑडियो
1: लेट्स डू इट
3: ब्रेकिंग स्टोरीज वी आर जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट
1: वी गॉट अ पिक्चर ऑफ द लेटर What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics. 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground. Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling. For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude. We're standing on the Indian Navy's newest warship. The line of control, Shiv Arur, NDTV.
0: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
4: आफ्टर स्मैशिंग स्टार्ट द एनडीटीवी एएम ग्रीन आईजीपीएल गोल्फ प्रो एम नाउ ट्रेवल्स टू हैदराबाद अ न्यू कोर्स अ न्यू कॉन्टेस्ट अ न्यू सेट ऑफ कॉन्वर्सेशंस विद द फाइनेस्ट इन गोल्फ Meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. The course of champions. The conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club. This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
5: Welcome to the second edition of the NDTV World India-Japan Summit.
6: Deep localization. What does it essentially mean for Maruti Suzuki?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
3: कौन देखेगा फिर फिल्में?
4: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
5: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
6: ITW presents

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
3: कौन देखेगा फिर फिल्में?
4: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
5: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
6: ITW presents NDTV Yuva 2026. This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi. After a smashing start, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
2: कौन देखेगा फिर फिल्में?
3: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
4: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
5: ITW presents NDTV Yuva 2026. This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
3: कौन देखेगा फिर फिल्में?
4: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
3: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
5: ITW presents NDTV Yuva 2026. This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
6: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
7: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टन, अनरिटन। As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
8: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
6: यू नो डिजाइन कितने हैं, लाख से भी ज्यादा डोर।

0: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
1: एक परिवार अटूट भरोसा।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टन, अनरिटन। As global equation shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
4: Meetha या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
5: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
6: कौन देखेगा फिर फिल्में?
7: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
8: की जिम्मेदारी सिर्फ BMC की नहीं है।
3: ITW presents NDTV Yuva 2026.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
5: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
6: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरनमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
7: एक परिवार अटूट भरोसा।
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
9: आफ्टर स्मैशिंग स्टार्ट, द एनडीटीवी एएम ग्रीन आईजीपीएल गोल्फ प्रो एम नाउ ट्रेवल्स टू हैदराबाद। अ न्यू कोर्स, अ न्यू कॉन्टेस्ट, अ न्यू सेट ऑफ कॉन्वर्सेशंस। Where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. The course of champions. The conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
10: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.

0: पूरे मेट्रो स्टेशन दिल्ली के बंद कर दिए गए हैं, रेल कैंसिल कर दी गई हैं, किस तरीके से देखते हैं वो बोल
1: डरे हुए हैं। और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
2: देखिए, इंडिया ब्लॉक नाम का कोई ब्लॉक ही अस्तित्व में नहीं है
3: जी।
2: ये सारे राज्यों में एक दूसरे से झगड़ते हैं
3: जी,
2: एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते, और मोदी जी के डर से
3: बिल्कुल
2: ये दिल्ली में साथ में आते हैं, इसलिए इनमें कोई एकता नहीं है। ये केवल डर के मारे साथ में आकर मोदी जी को कैसे हटाए इसका प्रयास करते हैं।
4: मैम, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, आई केम टू नो इवन कलकत्ता ऑल द ट्रेन इज बीन कैंसल्ड इंक्लूडिंग राजधानी एंड ऑल द रियली द स्टूडेंट्स एंड यूथ आर इन ए क्राइसिस।
5: सरकार कह रही है कि लोगों को परेशानी ना हो, इस वजह से हमने ये कदम उठाया, बंद किया।
4: कल क्या है, सैटरडे है, कल छुट्टी होता है सरकारी ऑफिस, हमको मत सिखाओ।
6: Well, the candidates may have been nowhere in the running, but Mamata Banerjee remains as feisty. In fact, Home Minister Amit Shah has just tweeted a while ago about the results of the bipoll. The Prime Minister had also tweeted earlier, and he had thanked the people for the mandate they have been given in West Bengal, both the seats being won by the BJP. And Amit Shah has, in fact, slammed the India Alliance and has said that what they have been doing is spread malicious propaganda. He said these parties, having lost their public base, question institutions after every defeat, but the public has recognized their character. That is why once again, by giving a resounding mandate, they have expressed their unwavering faith in the BJP. Despite the lies, confusion, malicious propaganda of Rahul Gandhi, BJP is winning one election after another after the leadership of Modi ji. And that is why I want to ask you, Akhilesh ji, first of all, if the government thinks that the will of the people is with them, what explains the kind of security that we are seeing across Delhi? What really is the government anticipating is going to happen? Will the Cockroach Janata Party be allowed to reach Delhi, or will they be stopped at the borders?
7: I think it's a case of once bitten, twice shy. Because just few months ago, we have seen that at Jantar Mantar, the CJP had protested against the NEET paper leak and the suicide by the students. And after that, the then Education Minister Dharmendra Pradhan had to resign. And you saw what happened on 20th of July when there was a protest march towards Parliament and police had to resort to use force. The government does not want to face the similar situation. One minister told me very clearly that agar wo baith gaye to phir kuch leke hi jayenge, so they will not allow to sit there. This is very clear that as far as the tomorrow's protest by the CJP is concerned, there is no permission for a sit-in protest at Jantar Mantar, and there will be all the efforts by the government and by the Delhi police to stop them from marching towards Jantar Mantar. Yes, obviously, because what happened last time, but there are other arguments also. They are saying that this is not a same emotive issue as it was in the NEET paper leak. The SIR issue is not that emotive issue. They are saying that they have conducted a survey in 6 major cities across the country. 72% people have supported the SIR exercise. They feel that there should be the voter list should be purified. Other minister commented to me that, you know, we can deal with the political parties. For example, the Congress party and the India Alliance partners, they can deal with them. But the CJP, if they want to resort to anarchy and want to use this kind of force at the streets, this will not be allowed. If they want, they are serious, then they should join the politics, they should come to politics, they should contest the elections, and then we'll face them.
6: Okay, very interesting. They should join politics, and in fact, these are live images. Let's stay with those visuals for just a second, because Save Democracy banners are being held by members of the opposition alliance, and they are marching to Rashtrapati Bhavan. And it seems to be, Vinod ji, kya sab log on board hai? Kya sari parties on board hai? And we actually have the names also of the people who are a part of this delegation. You've got a representation practically from everyone, but I don't think the Shiv Sena is there. I don't think Shiv Sena.
8: Sanjay Raut था उधर ठंगरे और संजय राउत को
6: यार. नहीं, संजय राउत मेरे ख्याल से अभी तक तो लिस्ट में नहीं है.
8: नहीं पहुंच पाए होंगे.
6: संजय राउत नहीं पहुंच पाए.
9: MLC इलेक्शन के कारण बोल रहे हैं हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमारा सपोर्ट उनके साथ.
8: उनका नाम था उनका
6: जो लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट ये भी कहे थे कि उद्धव ठाकरे नाराज थे, राहुल गांधी ने आज सुबह उनसे फोन पे बात की. ऑल्दो संजय राउत बहुत
8: जो लिस्ट गई थी प्रेसिडेंट हाउस में उसमें उनका नाम था.
6: ओके,
8: अब वो नहीं आ पाए क्या, ये तो पता नहीं. जो सबसे ज़्यादा है, देखिए, लीडर्स तो सारे ऑन बोर्ड हैं, मतलब नहीं है, पार्टीज ऑन बोर्ड हैं. जैसे अखिलेश यादव नहीं है, लेकिन राजीव राय हैं, उनके एमपी, जो सबसे बड़ी लाल टोपी दिखाई पड़ रही है आपको, उन्हीं की सब चाहे दिखाई पड़ रही है. तो पार्टियां तो ऑलमोस्ट जो इंडिया अलायंस में शामिल हैं वो ऑन बोर्ड हैं. लीडर्स में आप कह सकते हैं अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव मिसिंग हैं, जो कि होना चाहिए था कायदे से, लेकिन अब उनके अपने रीजन्स हैं, बट रिप्रेजेंटेशन उनका है. बाकी ममता बनर्जी हैं, कांग्रेस के लोग तो हैं ही, तेजस्वी यादव हैं, मनोज झा हैं, ये सब लोग हैं दूसरी पार्टियों के लोग. तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं है। असली बात जो है कि इस मूवमेंट को अपोजिशन कब तक सस्टेन करेगा, उसमें कौन कितना साथ देता है। जैसे जो दो दिन दिल्ली में हुआ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से एजिटेशन किया और बिल्कुल हेड ऑन लिया, आप कह सकते हैं, जो हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, उसका जोश पटना में भी दिखाई पड़ा। तेजस्वी यादव भी बैरिकेड पर चढ़ गए, जो घर से नहीं निकलते थे। तो ये ममता जी भी, खैर ममता तो स्ट्रीट फाइटर हैं, तो ये कब तक सस्टेन रहेगा। अब सबकी निगाहें कल के कॉकरोच जनता पार्टी पे टिकी हुई हैं कि कल उनका जो होता है डिमॉन्स्ट्रेशन वो कितना सक्सेसफुल होता है या क्या पुलिस से टकराव होता है, पुलिस कैसे डील करती है। क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है ना, ये क्रोनोलॉजिकली हो रहा है सारा, 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर लेफ्ट आयशा नेहा वोरा के नाम, उसके बाद 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर कांग्रेस के नाम, राहुल गांधी के नाम हो गया, अब ये आपका आ गया काकरोच जनता।
6: क्योंकि अभी कांग्रेस और इनका तो कल से खत्म है ना, बिकॉज नाउ द सीजेपी इज गोइंग टू टेक ओवर, बिकॉज राहुल गांधी इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो फॉर छात्रों की।
8: वो छात्रों की गूंजी उनका चेन्नई में है। इनका कांग्रेस का भी आगे का प्रोग्राम है, ये तो लंबा प्रोग्राम बना रखा ना इन्होंने। तो अभी ये डिस्ट्रिक्ट पे हो गया, सब जगह हो गया, अब दिल्ली में फिलहाल भी कुछ नहीं है।
6: नाउ दे हैव पास्ड द बैटन ऑन टू काकरोच जनता पार्टी, बट इज एवरीवन ऑन बोर्ड, इज अखिलेश यादव रियली ऑन बोर्ड? बिकॉज यस्टरडे व्हेन एवरीवन, द कांग्रेस वाज ऑन द स्ट्रीट्स, एवरीवन एल्स वाज ऑन द स्ट्रीट्स, अखिलेश यादव वाज इन अयोध्या, नाउ संजय राउत, उद्धव ठाकरे हैवंट टर्नड अप, सब कुछ ठीक है?
3: नहीं, सब कुछ ठीक तो नहीं है मुझे लगता है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि जिस पर राहुल गांधी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी सपोर्ट जरूर कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है कि सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर चुनाव नहीं जीता जा सकता। समाजवादी पार्टी का कंसर्न सबसे ज़्यादा अभी यूपी चुनाव होने वाला है, तो वो फोकस अपने चुनाव पर डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर फोकस करेंगे, सिर्फ इस फोकस के ऊपर चुनाव नहीं लड़ने जाएंगे। राहुल गांधी चूंकि यूपी में बहुत पावरफुल नहीं है, कांग्रेस का बहुत ग्राउंड नहीं है, राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ गणेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, वोट चोरी के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। मुझे लगता है अखिलेश यादव उस पर सहमत नहीं होंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बात है, अभी महाराष्ट्र में कोई ऐसा बड़ा चुनाव है नहीं, उद्धव ठाकरे विधानसभा चुके हैं, लोकसभा हार चुके हैं, नगर निगम के चुनाव हार चुके हैं, पार्टी टूट चुकी है, सब चला गया, तो उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा ये कंसर्न फिलहाल है नहीं कि ठीक है राहुल गांधी कर रहे हैं तो हमारा सपोर्ट है। ये देखने वाली बात होगी कि अब कल आज राष्ट्रपति से मिलने के बाद कल जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रदर्शन होगा उसको सरकार किस तरीके से हैंडल करती है, क्या उनको बैठने को देती है, क्या एयरपोर्ट से बाहर निकलती है अरेस्ट कर लेती है। अगर सरकार इस आंदोलन को कंट्रोल कर लेती है, आंदोलन नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है कि फिर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा उसको कंटिन्यू करना, क्योंकि कल राहुल गांधी चेन्नई जा रहे हैं छात्रों की गिल्ज के कार्यक्रम, उसके बाद राहुल गांधी क्या करेंगे, क्या राहुल गांधी फिर आने के बाद इसी तरह से जंतर मंतर, राजघाट या फिर आकाशवाणी या फिर
6: गणेश कुमार के घर कैलेंडर में वापस आके अपना कुछ आगे का प्लान करेंगे, और वो बताएंगे नहीं, वो फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्नड ओवर द लास्ट 4 डेज इज गोइंग टू बी,
8: मुझे लगता है कि आगे मीटिंग्स का है, रैलीज का है, वो पूरा उन्होंने बनाकर दिया हुआ है।
3: लेकिन मुझे लगता है कि
8: जो उनका जो छापामार तरीका है ना, वो किसी को नहीं पता है कि इसके बाद क्या करेंगे, वो कॉन्फिडेंस।
6: सो नाउ इट्स गोइंग टू बी गुरिल्ला वॉरफेयर, बेसिकली यू आर नॉट गोइंग टू टेल एनीवन, द यूनियन होम सेक्रेटरी, एंड परहैप्स दैट इज व्हाट दे आर गियरिंग अप फॉर, द यूनियन होम सेक्रेटरी हैज written to DGPs across states. What they basically have said is that you have to maintain law and order, the strengthen, the security arrangements need to be strengthened, and any breach of tranquility needs to be preempted. Critical public infrastructure also has to be safeguarded. Bhupen, do you think this was excessive? Because even today, the Supreme Court said you can't stop all movement. Remember what had been done through the day, and we'll just put out that data in a bit. Practically all the metro stations, 57 metro stations had been shut down. Movement was greatly, hindered. Some people were very upset about how even liquor vents had been shut down in Delhi for no obvious reason.
10: It's a weekend.
6: Excessive? Or is this scare?
10: No. So I think what the central government is trying to do, and it's very, very clear to me as we look at these live pictures coming from Parliament, is that the government has made a clear-cut distinction between dealing with the CJP and dealing with the elected political class. Like them, dislike them, but the Congress party along with the other allies of the India Alliance are all elected representatives. So there has to be a political approach in terms of dealing with these individuals. But when it comes to the Kokro Janta party, the messaging which is coming from the government is that this is a question of maintaining administrative mechanisms and it's a question of maintaining law and order. So as far as the Jantar potential Jantar Mantar protest is concerned, you are looking at, you know, internet shutdown. I'm just being told that now from 9 p.m. tonight, there is not going to be any mobile internet in parts of Central Delhi. We've never heard this before. You've talked about how metro stations are closed. I'm also told that starting 9 p.m. tonight itself, the borders of the NCR region, given the fact that Delhi is, you know, between Haryana and Uttar Pradesh, the borders are going to be sealed. Private buses are not

0: They are set to meet the president anytime now, and we've got the inside scoop of what these MPs will be demanding. One, to remove Gyanesh Kumar as the chief election commissioner, stop the SIR process altogether, restore the 13.3 crore names who have been excluded. They have been flagged up in the entire process. So 13.3 crore excluded names should be brought back, which is a little difficult because among these 13.3 crore excluded names are also those people who are dead, almost 6 crore such people who are dead. So how will one put those names back? But these are the demands which are likely to be put in front of the president. Akhileshji, would you like to add something to this? Are there any other demands as well? But very significant, they're saying we have to stop the SIR process altogether.
1: See, SIR process is already over in many states now. As far as Delhi is concerned, sources have just told us that they are hoping that in the next 1 week or so, this entire process will be over and completed in Delhi also. So whatever complaints are there, they will be addressed. You know that Election Commission in the past few days has taken many steps. They have said very clearly that a special campaign will be launched to include all those who have been left out. They will be given a chance. In fact, the officers will be going to their residences and they will be asking questions and will be asking them to fill forms. So the government is very clear that as far as the SIR is concerned, the process is has been very smooth. It has been upheld by the Supreme Court. That's what the Election Commission is saying. And they are saying that in the coming days also, whatever complaints are there, they will be addressed. As far as opposition parties are concerned, they are saying that all those 13 crore names which have been excluded should be included once again. As you rightly pointed out, Padmaja, there are many who are no more in this world. So how come their names can be included? This is the big question. Second point is that there are many names which are duplicated. I mean, they have more than one residence. So that name has to be excluded as per the law. This RPA is very clear. The Representative People's Act says that you can't have your name registered from two places. So those names have to be scrutinized and excluded from the voters list. Okay. This is the entire process.
0: Okay, so first, Gyanesh Kumar needs to go as Chief Election Commissioner. Names need to be brought back and the SIR needs to be put on hold. Please keep in mind that 20 states already, 20, right? This 20 states, the SIR process is already underway or it has been completed.
2: Well, there are three straight answers to these three straight questions. Firstly, is the SIR going to be stopped? Akhilesh has given that answer. That's not possible. Anyways, that matters before the Supreme Court for any further clarification, etc. There is nothing that's happening on that front. Is Gyanesh Kumar going to be removed? My understanding, and I've said this myself on multiple occasions, is what the government was on the back foot. But it's very clear to me now, looking at the distinction, the straightforward demarcation of the approach, the government is in no mood to get rid of Gyanesh Kumar. Gyanesh Kumar is also not going anywhere, therefore. And the third point, is the protest going to happen? You're just playing the soundbite of Ashutosh Ranka at Jantar Mantar. Look, boss, the kind of security arrangements that have been made, the extent to which the Delhi police has gone, where hotels, Airbnbs, potential places where protesters could have all, you know, gone in, the police has gone to the extent of fishing out people from such places. So I cannot fathom people. Suppose you want to go to Jantar Mantar tomorrow. How are you going to go? You're not going to walk. Right, 10 kilometers.
0: No, we will.
2: Well, I mean, you know,
0: we are very used to this.
2: Cool.
0: So one has to report. We walk.
2: One has to report. But as a, you know, as a protester, what happened last time, you remember, when they closed the Mandi House metro station on the 20th of July, then the call was that if you cannot get to a particular place, wherever you are, you start doing a dharna pradarshan. I think that was the high of 20th of July. An emotive issue such as NEET, this vote chori, deeply political issue, deeply contentious issue. I don't think it still gets in the heart of that youngster, at heart of the Gen Z person.
0: You know, whether it strikes a chord with the normal person or not, but are you going to end up creating these little pools of discontent? Because ye CJP ne kya bola hai, Sameer ji? Unhone kaha hai ki jahan hame roka jayega, hum wahin pe baith ke jantar mantar bana denge. Ab aapne jagah jagah pe, aapne ja kar ke Madhya Pradesh mein, Maharashtra mein, Rajasthan mein logo ko roka hai, UP mein log Bulandshahar ya kahin se video bana kar ke dal rahe hai ki hame yahan par ghar pe roka ja raha hai. Ab agar aap har shahar shahar ja ke log dharne pe baithna shuru kar denge, what is the government's plan to deal with this? And it's interesting in this context to remember that the DGP just said that, all the state DGPs have been told that please ensure that there is law and order in your respective states, which means that they are also anticipating that this could be more than just Delhi, that this could spread across the country in other states as well. Sameer ji,
3: plan? I think this time, पुलिस प्रशासन ने और केंद्र सरकार ने बहुत स्ट्रांग अरेंजमेंट किया हुआ है। जो लास्ट टाइम का जो धरना प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हो गया था, अब मुझे लगता है कि सरकार किसी भी तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी को स्पेस देना नहीं चाहती। जिस तरीके से अरेंजमेंट किया बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस जनता पार्टी के लिए। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा है कि जहां हमें पुलिस रोकेगी हम वहीं धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, ये संभव नहीं होगा। पुलिस उनको लेकर कहां जाएगी ये मुझे नहीं पता, मतलब किसी को नहीं मालूम होगा। पुलिस उनको क्या रामलीला मैदान लेकर जाती है, पुलिस उनको लेकर कहीं और लेकर जाती है, नजरबंद करती है। देखने वाली बात होगी कि कल कितना करोड़ आता है और पुलिस ने उसके लिए क्या स्टेप्स उठा के रखे। लेकिन यह बात भी चाहिए कि पुलिस इस बार किसी भी तरह से ढिलाई करने की स्थिति में नहीं है। उन्हें थोड़ा भी स्पेस नहीं देगी कि वो दिल्ली में कहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर सके और उनके साथ क्राउड आ सके। पहले ही प्रिवेंटिव स्टेप पुलिस ने इतने ले लिए कि जनता का वहां पर, मतलब युवाओं का या उनके साथ जो समर्थक है उनका पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। उनको कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कैसे करेंगे, इंटरनेट बंद रहेगा, मैसेज कैसे करेंगे।
0: ट्रेनें रोक दी हैं, अभी आपने 20-25-30 ट्रेनें रोक दी हैं, कब तक ट्रेन रोकेंगे? चलिए आप सैटरडे को रोक लेंगे, संडे को रोक लेंगे, फिर मंडे को क्या होगा?
3: बिल्कुल, यही सबसे बड़ा मतलब प्रशासन के सामने चुनौती होगी कि ये कब तक उनको रोक पाएंगे और कांग्रेस जनता पार्टी के जो लीडर्स या कांग्रेस जनता पार्टी इसको कब तक कंटिन्यू कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी।
0: जस्ट कमेंट ऑन व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, इवन एज द डेलीगेशन हैज गॉन इनसाइड, कैन वी जस्ट अप द ऑडियो लिटिल बिट, इफ वी कैन गेट एन ऑडियो ऑन व्हाट प्रियंका गांधी इज सेइंग। Okay, I don't think we have it yet, but this is very interesting. Rahul Gandhi has gone inside. Priyanka Gandhi is at the barricades and she seems to be saying something to the police even now. Apne haath pe poster lekar ke Priyanka Gandhi. What is the thinking in the government of this Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi duo who seems to have really been the master strategist over the last 4 days?
1: What they are saying that there is no unanimity as far as the India alliance is concerned. They are saying that there is a difference of opinions among the alliance partners. As you also mentioned in the beginning that the Samajwadi Party was not on board. And after that, like today, Shiv Sena, UBT, there
0: was some doubts about... But today Rajiv Rai is there?
1: Rajiv Rai today is there. But the way they have been conducting, they feel that the way Rahul Gandhi is taking the lead. So with that lead, is the alliance partners, they are happy or not? This is a big question. They are also saying that within the Congress, there is also a difference of opinion whether to continue with this kind of agitation or not. This is what the government is saying. Other point, they are saying that the way more than 40 MPs, they did not participate, they actually, you know, just vanished. And the KCV and Opal was worried about that. All these factors in
0: 40 MPs of the Congress.
1: Of the Congress party. They were not part.
0: They haven't come for the last and 1 week. They haven't been there.
1: KCV and Opal has sought their names and sought clarification. This is what we have reported. So all this indicate that, you know, everything is not well. And this is Rahul Gandhi's style. They know it very well. But now they also say that maybe Rahul Gandhi feels that last time on the NEET issue, he was left behind and the CGP stole the limelight. Maybe that's why this time he is very cautious and he's taking a lead.
0: So, Sameer ji, in fact, ये भी कहा जा रहा था कि अब चलिए खुद कांग्रेस के कुछ लोग अगर 40 सांसद नहीं आते हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। कुछ एक ऐसी भी कहानी थी कि कोई सांसद थे कांग्रेस के, वो एक पैदल चल के गए प्रियंका गांधी के साथ थोड़ी देर तक, फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ के निकल लिए।
3: राजस्थान के सांसद मुझे लगता है बहुत इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं रहे, और जो खबर जो आ रही है सब राजस्थान के सांसदों की है,
0: कांग्रेस के
3: सांसद है। और जो खबर चल रही है कि बाद में ऑटो से वो घर चले गए, कुछ देर के लिए उन्होंने चेहरा दिखाया और वो चुपचाप से निकल गए, वो राहुल कस्बा को लेकर आ रही है, जो चुरू के सांसद है उनके बारे में खबर चल रही है कि वो ज़्यादा दुखे नहीं है। और मुझे लग रहा है कि सांसदों को भी लग रहा होगा ना कि भाई इसका अल्टीमेटली क्या, कब तक आप इस तरीके से करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस के सांसद भी इस बात से तैयार नहीं है, सहमत नहीं है कि इस तरीके से आप कब तक ज्ञानेश कुमार को लेकर मोमेंटम खड़ा करने की कोशिश करोगे और उसका अल्टीमेट बेनिफिट क्या होगा। देखिए, जनता पूरी तरीके से इससे कनेक्ट नहीं कर पा रही है। आप आज देखिए, आज जो उपचुनाव के चुनाव परिणाम आए, कहाँ लग रहा है कि कांग्रेस को कहीं समर्थन इसको लेकर मिला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के सांसदों को भी इसको लेकर एक अंदर थोड़ी नाराजगी है कि भाई बिना पूछे पार्टी तैयार कर रही है। सहयोगी दलों को भी नाराजगी है कि भाई राहुल गांधी ने कॉल कर लिया और राहुल गांधी सीधे जाकर आकाशवाणी भवन के अंदर बैठ गए, बाकी सांसदों को पता नहीं था, विपक्ष सांसदों को, वो चले गए अपने घर पर। दूसरे दिन आप लंच पर बुलाते हो और आप उसके बाद सीधे जंतर मंतर चले जाते हो, बाद में आप बुलाते हो आप राजघाट चले जाते हो। तो आप इंडिया गठबंधन के साथ बैठक करके आप रणनीति तय नहीं कर रहे हो कि किसको क्या भूमिका निभाना है, अखिलेश यादव की क्या होगी, तेजस्वी क्या होगी, उद्धव का उसके अंदर क्या कंसर्न है, सब मिलकर कैसे इसके आंदोलन को लीड करेंगे। जो राहुल गांधी को लग रहा है राहुल गांधी वो तय कर रहे हैं, कांग्रेस उस पर आगे बढ़ रही है और सहयोगी दलों से, जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है उनसे कह रही है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो। मतलब उनको लग रहा है कि भाई हम कोई पपेट थोड़े कि जो राहुल गांधी कहेगा उस हिसाब से हम मूव करेंगे।
0: दिस शुड एंड अप बीइंग अ राहुल एंड प्रियंका शो।
2: वेल एक्चुअली टू द राजस्थान स्टोरी देयर इज अ सब प्लॉट टू इट। यू सी, आई डोंट नो, देयर वाज अ वीडियो व्हिच रिसेंटली केम आउट जस्ट यस्टरडे बिटवीन अशोक गहलोत एंड सचिन पायलट एट अ गैदरिंग, वेयर सचिन पायलट वाज पुलिंग अशोक गहलोत टुवर्ड्स द कैमरास एंड सेइंग अरे आप हमारे बड़े भाई हैं। नाउ इन राजस्थान See, Sachin Pilot has been given a huge responsibility of managing Punjab. Mm. So therefore, it's an upliftment to his profile. What happens to Ashok Gehlot then? He has to be assertive. Look at these, you know, in all the pictures, who are the three people? KC Venugopal, Dipender Hooda, and today we're seeing DK Shivkumar as well.
0: And Raja Wadding.
2: And Raja Wadding.
0: You know, Raja Wadding, 1 week after he's been removed as president, is sitting right next to Priyanka.
2: But you're not seeing, at least I haven't seen Ashok Gehlot anywhere in the pictures. And you know, he's a multiple term former chief minister, a heavyweight.
4: He's not an MP.
2: He may not be, but you know, he's a supporter of.
4: Digvijay Singh not there.
2: There's a difference between Ashok Gehlot and a Digvijay Singh.
4: Former chief minister. Just a minute.
2: Ashok Gehlot. Are you saying that Ashok Gehlot is not responsible in any way?
4: No, he's responsible.
2: If the MPs are coming or not, Ashok Gehlot has nothing to do with it.
4: This agitation is only for MPs. Just a minute. Yes. That is why Digvijay Singh is not there. Yes. Kamal Nath is not there. Ashok Gehlot is not there.
2: Chief ministers are there.
0: DK Shivkumar is there.
4: Chief minister is there. Nah.
2: I would actually like to counter argue Padmaja that if this is such a big thing, and if Rahul Gandhi is putting everything on the table, why should all these leaders not be there? Please tell me. I'm actually good that you mentioned this, Vinodji. I would have assumed that with all these former chief ministers, all these big Congress heavyweights,
4: Chidambaram is not there.
2: They should have all thrown their weight.
0: I haven't seen P. Chidambaram.
4: That's why I'm saying. It's not a call. सारे कांग्रेस आदमी सब कांग्रेस में वहाँ पहुँच जाएं।
2: क्यों नहीं होना चाहिए?
4: नहीं
2: अभी। लेकिन अरे आपके नेता
0: शक्ति प्रदर्शन में तो होना चाहिए।
4: होना चाहिए अलग बात है। होना चाहिए तो ये आपका भी पॉइंट, उनका भी पॉइंट है, ये एमपीस का है ये इरिटेशन। इसलिए वो होना चाहिए तो बहुत कुछ होना चाहिए, होना चाहिए था अजय राय को भी, होना चाहिए तो कलकत्ता के अध्यक्ष को, होना चाहिए तो अलग बात है, लेकिन क्या क्या होना चाहिए दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन ये है कि ये एमपीस की कॉल है। हाँ, कस्बा का जैसे इनका, देखिए कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस को इस तरह के एजिटेशन की आदत कभी रही नहीं है। वो इंदिरा गांधी का जमाना था जब इंदिरा गांधी लड़ी थी 77 में, कांग्रेस के लोग का खाली ये था कि आप एक डेलीगेशन निकाल के जाइए, ज्ञापन दीजिए और थोड़ा बहुत फोटोशॉट शूट करिए और चले आइए। ये पहली बार राहुल गांधी ने कांग्रेस को और अपोजिशन के सारे लोगों को सड़क पर ला दिया है कि अब तेजस्वी यादव बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं, जो चढ़ कैसे चढ़ रहे हैं, अखिलेश यादव वहाँ बगल में खड़े थे, बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने अनएक्सपेक्टेडली पूरे अपोजिशन को इतना एग्रेसिव बना दिया है। अब चैलेंज जो है, क्या ये एग्रेशन कंटिन्यू करेगा? दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज।
0: देखिए प्रियंका गांधी इमेजेस वी आर सीइंग व्हाइल शी इज स्टैंडिंग देयर एट द बैरिकेड्स, शी इज स्लोगनियरिंग अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन एंड शी हैज गॉट अ पोस्टर, डेमोक्रेसी का सौदा किसने किया, स्पेशल 420, अ टेक ऑन, ओके आई कैन सी मोहिबुल्ला नदवी ऑल्सो ऑफ द समाजवादी पार्टी ओवर देयर, सो इन एडिशन टू राजीव राय यू गॉट मोहिबुल्ला नदवी, डेमोक्रेसी का सौदा किसने दिया, तरुण गोगोई इज देयर, बट अमंग द वुमेन देयर आर लॉट ऑफ नॉन एमपीज ऑल्सो, यू गॉट पीपल लाइक अलका लांबा इज देयर, दानिश अली इज देयर, यू गॉट पीपल लाइक,
4: नहीं मना नहीं है, देखिए मना किसी को नहीं है कि दानिश अली आ जाए या अशोक गहलोत भी आ जाए, कोई मना कर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंडेटरी नहीं है उनके।
2: नहीं, वो सही बात है,
0: सुखविंदर सुक्खू भी है, सो ऑल द चीफ मिनिस्टर,
2: आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये लोग नहीं आए, बिकॉज पद्मजा दिस इज एग्जैक्टली,
1: भूपेश बघेल इज देयर,
0: सर अब तो देखिए एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अगर वहां छत्तीसगढ़ के खड़े हैं तो अशोक गहलोत नहीं है।
2: दिस इज, सी इफ इफ द एंटायर रैंक एंड
4: फाइल ऑफ द कांग्रेस 75 प्लस नहीं है, बिलो 75 है, तो जिनको आगे पॉलिटिक्स करनी है वो हैं, जिनको रिटायरमेंट लेना है भविष्य में वो नहीं है।
0: आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में 75 प्लस पॉलिटिक्स नहीं करते तो खड़गे
4: नहीं करना है, धीरे धीरे फेज आउट तो हो ही रहे हैं।
2: आज कमलनाथ अच्छा लाइन हम लोग,
4: आज कमलनाथ कहाँ है बताइए, आज कमल दिग्विजय सिंह अपने पॉलिटिक्स, उनका रोज ट्वीट आ रहा है, मोस्ट वो बेटे को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ा रहे हैं, अशोक गहलोत भी अपने बेटे को बढ़ाने
0: की, दिग्विजय सिंह तो अभी यात्रा पे निकले हुए हैं ना, अयोध्या की यात्रा के लिए कुछ पंचतीर्थ
4: मतलब यात्रा अलग चलता है उनका उनका। तो मैं कह रहा हूँ कि जितने आपके 75 प्लस हैं वो नहीं है, चिदम्बरम हो, दिग्विजय हो, कमलनाथ हो, ये अशोक गहलोत हैं, या इवन सिद्धारमैया, अब खाली खड़गे जी को छोड़ दीजिए, वो अध्यक्ष हैं, वो तो रहेंगे ही, वो 80 प्लस हैं।
0: ओके, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर आई वांट टू शो यू, द ओनली लेडी आई कैन सी राइट नाउ राइट नेक्स्ट टू प्रियंका गांधी इज महुआ मोहित्रा ओवर देयर, व्हिच इज क्वाइट interesting considering that we've got two bipolar results from West Bengal where the Congress and TMC were fighting against each other on at least one of the seats. Of course, in Nandigram, the TMC candidate had dropped out, but in Rejinagar, they had fought against each other. The Congress came up in third position and the BJP won that seat. But I want to play out what Shamik Bhattacharya and Shuvendu Adhikari said on the back of the results that we have seen, because while we wait for the delegation to come out after meeting the president, democracy ka sauda kisne kiya? Ironically, democracy in a way has been validated, or at least the voting process has been validated by the results that we saw in those 6 seats. So let's play out for you what the chief minister and the BJP chief in West Bengal said after these bipoll results.
5: जो भ्रम पैदा करने के कारण

0: फिर वहां पर उसने वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर जो लंबे समय से 30 साल से बीजेपी के पास थी उसको हरा दिया। दतिया हरे दतिया में तो फिर बीजेपी ये कह सकती कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया तो नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी को हरवा दिया, लेकिन बाकीपुर में तो पार्टी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, वहाँ पार्टी बीजेपी हार गई। तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे बंगाल के अंदर वापसी करेगी इस परिस्थिति के अंदर।
1: रबीउल आलम चौधरी ऑफ द ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस गॉट अ वॉपिंग 3,847 वोट्स। फॉर परस्पेक्टिव बीजेपी गॉट 1,29,000 वोट्स। आम जनता उन्नयन पार्टी हुमायूं कबीर सन गॉट 54,000 वोट्स एंड ममता बनर्जी हु वाज अ थ्री टर्म चीफ मिनिस्टर हर कैंडिडेट इन अ मुस्लिम मेजोरिटी सीट हैज गॉट 3,847। द कांग्रेस गॉट ऑलमोस्ट डबल ऑफ दिस 6,100।
0: डिपॉजिट लॉस हो गए, डिपॉजिट लॉस हो गए इनके।
2: कांग्रेस ने इंप्रूव किया, 4,000 से उसके जो है 2,000 वोट बढ़ गए, पिछली बार 4,101 वोट।
1: मॉरल विक्ट्री हो गई,
2: मॉरल विक्ट्री हो गई।
3: पार्टी इटसेल्फ ममता बनर्जीज एंटायर तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा लोकसभा विधानसभा एवरीबॉडी इज मूव्ड ऑन मास। यू नो द बीजेपी व्हाट काइंड ऑफ election, are you thinking that Mamata Banerjee would have been able
1: Mamata
3: to
1: Mamata Banerjee in particular, what is her future now? Because I remember last time in the India Alliance, Mamata Banerjee had stayed away and we were reading reports that she had said very clearly that if the Congress is going to have this big brother attitude and in particular Rahul Gandhi, she was not comfortable. Now she sat next to Sonia Gandhi and she was saying Gyanesh Kumar must go, Gyanesh Kumar must go. वो आगे करेंगी क्या? वो राज्यसभा आएंगी क्या? व्हाट विल शी डू? शी डिडंट इवन फाइट दिस इलेक्शन।
2: राज्यसभा कैसे आएंगी?
4: राज्यसभा के लिए भी इसको
2: अब वो तो सारे एमपीज चले गए उधर, एमएलएस सॉरी। तो
1: एक कोई सीट है ना जो कि लोकसभा की खाली है, जिनके उनके सांसद थे जिसकी डेथ हो गई थी, कोई मुस्लिम सांसद थे उनके,
2: बशीराट
1: बाशेराट में, could she fight that election maybe when bipoles are
2: held? वो election
1: में ममता जी, very curious why was the bipole for
2: वो ममता जी अगर election लड़ती हैं तो फिर ममता जी के लिए बड़ा challenge होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पूरी कोशिश करेंगे कि ममता जी उस चुनाव हार जाएं, और ममता जी चूंकि दो बार हार चुकी हैं नंदीग्राम से और भवानीपुर से।
1: बट बासरहाट इज द सिटेडल ऑफ अभिषेक बनर्जी, इट इज साउथ 24 परगनास।
2: अभिषेक बनर्जी वो जमाना गया ना, आज शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर है, सिस्टम उनके पास,
3: उनका तो ऑफिस ही चला गया। अभिषेक बनर्जी ऑफिस
2: देखिए ये
3: वे यूज्ड टू ऑपरेट फ्रॉम हैज बीन टेकन ओवर बाय द बीजेपी
1: कोलकाता,
3: सो देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीएमसी।
2: ये जो दौर है ये सिस्टम का दौर है, कोई भी पार्टी हो सिस्टम बहुत काम करता है। मैं नहीं कह रहा कि चुनाव में बेईमानी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम से आप बहुत तरह की चीजें आप हैंडल कर सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है।
3: इफ आई मे ऑल्सो ऐड, यू नो देयर इज आई मीन आई फाइंड अ ग्रेट डील ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द क्वेश्चन दैट यू आर पोजिंग अबाउट ममता बनर्जी एंड लुक इन यूपी इन मायावती। ममता बनर्जी डिपेंडेंट ऑन हर नेफ्यू अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी डिपेंडेंट ऑन हर नेफ्यू, यू नो हु कीप्स गोइंग इन एंड आउट ऑफ द नेशनल कन्वीनर्स पोजीशन,
1: एंड ही इज बैक नाउ,
3: एंड ही इज बैक नाउ, एंड वी डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग, वी डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग
2: टाइम।
3: आई थिंक देयर इज अ लेसन देयर, देयर इज अ लेसन देयर दैट व्हेन यू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक मायावती डिड और ममता बनर्जी डिड, व्हेन यू टुडे इफ यू लूज टू द बीजेपी, इफ यू आर सीडिंग ग्राउंड टू द बीजेपी, योर पोटेंशियल ऑफ recapturing that ground today is very, very difficult.
1: Is Mamata Banerjee's politics over?
3: Well, I never say never again when it comes to Indian politics, but I am seeing a great deal of similarity in the political path which Mayawati had walked on and now the political path that Mamata Banerjee is walking on. The only difference is this, that Mayawati ultimately did stitch some kind of an understanding with the BJP, we all know. Mamata Banerjee's entire party has moved to the BJP. Mamata now is suddenly finding some solace and comfort in being on the right side of the Congress party for how long? Because ultimately she'll also ask herself this question, that if all these bipolar results, despite all this street agitation, everything, is not working for the Congress party, what does she do? Just like Rahul Gandhi is looking for, you know, new style of protest and politics, Mamata will also be forced to look at some new style of politics and who knows, maybe new style of protest.
1: Funny thing is, we're talking about Mamata Banerjee. The Congress was fighting this election and Adhir Ranjan Chaudhary, former LOP, former president, before this by-election, and by the way, Reji Nagar falls in his area only, was sitting in London wearing a hat and sending bites on ANI about how the democracy is being killed by the BJP.
0: No, but I think Adhir Ranjan Chaudhary has given the statement that Mamata Banerjee ko कांग्रेस के अंदर विलय कर देना चाहिए, मुझे लगता है एक अच्छा प्रस्ताव था। अब कांग्रेस अकेले दम पर ममता बनर्जी अकेले बंगाल के अंदर कोई ताकत बन पाएगी, मुझे इसकी संभावना अब कम नज़र आती है। ममता बनर्जी अगर कांग्रेस में जाएगी और वैसे भी बंगाल के अंदर अगर जाती है तो सबसे बड़ी लीडर तो वही रहेगी। अधीर रंजन कह रहा है ममता बनर्जी को लीडर मानने को तैयार है, सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री भी बनेगी, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के लिए बेहतर ऑप्शन है कि वो कांग्रेस में जाए और एक बड़ी ताकत बने, क्योंकि लोकसभा में उनको कांग्रेस का समर्थन मिलेगा। अलग लड़के मुझे लगता है बहुत ताकत नहीं बन पाएगी, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या है। मुस्लिम वोट आप देखिए, नौगांव आसाम लोकसभा सीट दो बार से कांग्रेस के पास थी, वहाँ

0: थर्ड नंबर पर जा रहे हो, आप अपना मुस्लिम वोट बचा के नहीं रख पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती कि जिस मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस सब कुछ करने को तैयार है वो वोट बैंक कांग्रेस के पास नहीं है, वो शिफ्ट हो रहा है।
1: देयर इज वन पर्सन हु विल बी हैप्पीएस्ट टुडे विद दिस, इट विल बी अखिलेश यादव। ही इज सिटिंग प्रिटी इन अयोध्या, ही इज डूइंग राम कथा ओवर देयर। कांग्रेस हैज लॉस्ट नागांव एंड इट हैज लॉस्ट दीस टू सीट्स इन वेस्ट बंगाल। अखिलेश जी फाइनल वर्ड।
2: अखिलेश यादव थोड़े अलर्ट भी हो गए जो आज ममता बनर्जी के साथ हो रहा है, ये देख करके कि अगर क्षेत्रीय सत्रप अगर नीचे जाते हैं, अगर उनका आधार कम होता है तो फायदा किसको होता है? दोनों राष्ट्रीय दलों को होता है, बीजेपी को होता है, कांग्रेस पार्टी को होता है।
1: क्योंकि
2: छह महीने पहले जो ममता बनर्जी राहुल गांधी के नाम पर तैयार नहीं थी, आज वो दिल्ली आई हैं और वो राहुल गांधी की अगुवाई में वहाँ पर राष्ट्रपति भवन गई हैं। कल अखिलेश यादव के साथ भी ये हो सकता है, तो इसलिए उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी।
1: ओके, एवरीवन शुड बी ऑन गार्ड। इनफैक्ट वी आर एंडिंग विद दिस ब्रेकिंग। एज फार एज द कर्ब्स व्हिच हैड बीन पुट इन दिल्ली बाय द सेंटर बाय द दिल्ली पुलिस इज कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कॉपी हैज बीन एक्सेस्ड बाय एनडीटीवी व्हिच हैज कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स ऑर्डर हैज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शंस एंड ओवररीच, नो आउटराइट प्रोहिबिशन ऑन मूवमेंट ऑफ मेट्रो ट्रेन, परमिट ऑपरेशंस इन अ रेगुलेटेड फैशन, पब्लिश ट्रैफिक एडवाइजरी इन न्यूज़पेपर्स। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट वेरी clear, there cannot be wholesale restrictions put in place. Now, with the kind of preparations that the government, the Delhi police has done, is Saturday going to see a redux of the 20th of July, what we had seen during the anti-NEET paper leak protest? We'll be keeping a close watch for today. Thank you very much, all gentlemen, for having joined me on the show. Thanks very much for having tuned in. And remember, when it's any big story that you want to get to the bottom of, the buck stops here. Thanks for watching.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे.
1: 5 आवर्स टू गो फॉर ऑल ऑफ डीकेएस ड्रीम्स टू कम ट्रू. आई एम गोना ट्राई एंड गेट मोर इनटू द क्राउड्स. हियर इज द पिक्चर. सिद्धरमैया. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
2: Higher end, check the audio.
1: Let's do it.
3: Breaking story, we're jumping straight into it.
1: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
4: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
1: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
5: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
4: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
1: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
0: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
6: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है.
7: कुछ इससे भी अनोखा
6: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला.

जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: यार लोन भूल गया। मैरी
3: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना,
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
5: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
1: कौन देखेगा फिर फिल्में?
2: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
3: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
4: ITW presents NDTV Yuva 2026. The sharpest global voices decode a world between orders. Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, at the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV.
5: 5 hours to go for all of DKS's dreams to

0: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
1: कौन देखेगा फिर फिल्में?
2: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
3: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
4: ITW presents NDTV Yuva 2026.

0: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
1: ही इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट पॉलिटिशियंस ऑफ दिस सेंचुरी प्राइम मिनिस्टर टू 1.5 बिलियन ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन अनडिस्प्यूटेड फेस ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट richest and fastest growing political party. He takes pains to remind everyone that despite his exalted station, he was and remains a man of the masses.

0: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
1: कौन देखेगा फिर फिल्में?
2: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
3: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है,

0: उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
1: कौन देखेगा फिर फिल्में?
2: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
3: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
4: ITW presents NDTV Yuva 2026. This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: In West Bengal as well, where there were two constituencies for which bipoll was held. One was Nandigram and the other was Rajnagar Assembly bipolls, and this was held in West Bengal. Now remember, BJP here has secured a clear win in both the constituencies. BJP workers were seen celebrating in Nandigram, where the party's candidate was leading by 1 lakh votes earlier, and then it secured a major leap. Now in Rajnagar, the BJP was also ahead by a large margin, and hailing the lead by BJP, West Bengal Chief Minister Suvendra Adhikari said that the pro-nationalist forces were winning the bipolls, and finally the results were out. Now the bipolls marked the BJP's first electoral win since coming to power in West Bengal in May. We have a couple of reactions on this story as well. Let's listen to some of them.
1: কারণ উনি একটা সময় 70% এর দম্ভ দেখিয়েছিলেন। সেই 70% একটা বড় অংশ আজকে তো ভোট দিল ভারতীয় জনতা পার্টি। এই সব র‍্যাডিক্যালিজম পশ্চিমবাংলা চলে না। এটা 1947 এর 20 জুন বাঙালি কংগ্রেস ভারত ভাগ করেছিল আর ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পাকিস্তানকে ভাগ করে দিয়েছেন। অতএব এখানে এসব চলে না, মূল লাইনের স্রোতে সবাইকে আসতে হবে। 46% ভোট পেয়েছি আমরা রাজ্যে, আগামী নির্বাচনগুলোতে 60%-এর বেশি ভোট পাব।
2: নন্দীগ্রাম जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, जनता के खिलाफ हिंसा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रोकने का एक ऐतिहासिक प्रमाण बना था, आज सुशासन का संकल्प लिए नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है।
3: ये जीत हमारा जीत नहीं है, एक कमल का जीत है। ये जीत के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर हेडक्वार्टर जी एवं द्वितीय संचालक गोलगा जीत जय। ये जीत हमारा बूथ कार्यकर्ता का जय है, ये जय तो हमारा मंडल प्रेसिडेंट अध्यक्ष का जय है, हमारा कोई जय नहीं है, हमारा के लिए कोई बात नहीं है।

0: first. Well, the capital has turned into a fortress ahead of the Congress Janata Party's proposed protest at Jantar Mantar tomorrow. Delhi police maintains that no permission has been given as a request that was sought at the last moment. More than 23,000 police and paramilitary personnel have been deployed across the capital. Multi-layered barricading is also in place. Border entry points have also been put on alert. Meanwhile, 57 metro stations have been shut across Delhi. There are several trains arriving at two major railway stations, New Delhi and Nizamuddin, between 4 a.m. and 2 p.m., which also have been cancelled. We have a reaction coming in on that note on the shutdown in Delhi. Let's listen in to some of them.
1: चीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जॉइंट सीपी नूपुर प्रसाद जी मौजूद है, सीधा उनके पास चलेंगे। मैम, हमने देखा सीजेपी की तरफ से कल के प्रोटेस्ट को लेकर के इंटीमेट किया गया था दिल्ली पुलिस को, परमिशन मांगी गई थी कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना है, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने जो परमिशन है वो डिनाई कर दिया है।
2: उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी और ये इंटीमेट किया था कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं जंतर मंतर पर 10 तारीख को। ये जो प्रोटेस्ट की एप्लीकेशन है, जो इंटीमेशन है, उसको देखा गया और पाया गया कि वो इस्टेब्लिश्ड हमारी जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत नहीं है और ये बहुत ही अल्प समय हमें दे करके इन्होंने प्रोटेस्ट की एक एप्लीकेशन डाली है। इसके बावजूद इनका जब ये एप्लीकेशन पर गौर किया गया तो पाया गया कि इन्होंने इनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, जहाँ इन्होंने इनका जो कंडक्ट पूरी तरीके से नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉफुल डायरेक्शन था और अपने ही जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी उसको भी इन्होंने कंप्लाई करने से मना ही कर दिया था। इन सब के अलावा जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और पब्लिक सेफ्टी है, इसके मद्देनज़र इस जो एप्लीकेशन आई है उसमें अनुमति नहीं दी जा रही है।
3: आर गंभीर ने, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, इमरजेंसी में कभी रेलवेज बंद नहीं हुई थी, इस सरकार ने रेलवेज बंद कर दिए हमारे आंदोलन से पहले, और ज्ञानेश कुमार इतना जरूरी क्यों है आपको? इससे साफ पता चल रहा है कि तो राजा की जान, क्या कहते हो, तोते में किसकी जान, हाँ तोते में, तो ज्ञानेश कुमार वो तोता है, जिसको पकड़ेंगे तो राजा भी चला जाएगा।
4: कल हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर का, उसके लिए कल सुबह मैं मुंबई से दिल्ली के लिए निकलूंगा, तो कल सुबह लैंड होने के बाद दिल्ली में मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं, क्या मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया जाता है या उसके बाद अरेस्ट कर लिया जाता है, आई एम रियली नॉट श्योर। लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं डरने नहीं वाला हूँ, क्योंकि हमें हमारे देश का लोकतंत्र बचाना है, हमें हमारी डेमोक्रेसी बचानी है। सो मेरी बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर इन केस मुझे डिटेन कर लिया जाता है या इन केस मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसका मुझे कोई डर नहीं है।
5: हम एक युवा वाला मूवमेंट है, यूथ मूवमेंट है ना, हम लोग अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं कि अगर हमारा वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है हम लोगों से, अगर इलेक्शंस का कोई महत्व नहीं बच रहा है इस देश में, अगर युवाओं को वोटर बनने से रोका जा रहा है 2024 से, जेंजी का वोटर लिस्ट में ऐड करने से रोका जा रहा है, तो ऐसा सिस्टम नहीं चल सकता है। इसीलिए हम लोग एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे हैं 10 तारीख से दिल्ली में, और जो जंतर मंतर है वो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट में अगर आप ही बोलते हो कि वहीं पे हो सकता है प्रोटेस्ट, कहीं और नहीं हो सकता है, तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि हम लोग जंतर मंतर जाए, लेकिन तब भी हम लोग को रोका जा रहा है जंतर मंतर जाने से।
0: Moving on, it's the India block versus the CEC, and the India block this time has taken its fight against the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar to the President. Led by Rahul Gandhi, opposition MPs marched to Rashtrapati Bhavan, where a delegation met the President and submitted a memorandum seeking Gyanesh Kumar's resignation. The block has also demanded the suspension of SIR, restoration of deleted voters, a return to the paper ballots, and action over its elections it alleges were stolen. Rahul Gandhi says that the opposition will approach the Chief Justice of India on Monday, claiming it has evidence of electoral manipulation.
6: She accepted our statement and then she said to us that we need to bring her proof of election chori. I said that the proof of election chori is known to the whole country. State after state has been stolen. 24 election, as you know, has been stolen. This same group of people will very happily take the proof of election chori that we have collected to the President of India.

0: the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
1: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
2: कौन देखेगा फिर फिल्में?
3: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
4: ये जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं
0: है। ITW presents NDTV Yuva 2026.
5: Welcome to the second edition of the NDTV World India Japan Summit.
6: Deep localization. What does it essentially mean for Maruti Suzuki?
7: To be competitive and to be

0: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
1: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
2: Higher Ed, check the audio.
0: Let's do it. Let's start.
3: Breaking story, we're jumping straight into it.
0: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
1: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
0: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
4: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
1: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
0: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Launch control, 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
10: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Avasthi. Let's begin with the headlines that we're tracking at this hour. TVK wins big in Dharapuram bipole and secured a commanding victory in Madurantakam, marking a strong showing in its first assembly bipole test. Vijay calls it win of dignity and civility. Stalin, meanwhile, says that cinematic charisma will not be enough. The BJP has scored a double victory in West Bengal's Nandigram and Rejinagar bipoles, with Hansi Rani Rath securing the highest victory margin in Nandigram since 1967. In Rejinagar, where around 70% of the voters belong to minority communities, the BJP candidate defended his nearest rival by 70,000 votes. JNU sacks Congress MP Akoi Jam after panel recommends major punishment in the sexual misconduct case. Ahead of the CJP protest at Jantar Mantar demanding Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's resignation, mobile internet services have been suspended within a 4-kilometer radius of Janpath Kartavya Path crossing from tonight till 10 p.m. on October 10th. The Trump administration has suspended green card labor certification filings for 8 companies, including Indian IT majors like TCS, Infosys, Wipro, etc. The United States government alleges misuse of employment-based immigration system and says that the move aims to protect American workers. Former Union Minister Rajiv Chandrasekhar has responded to Elon Musk's criticism over Starlink's delayed commercial launch in India, saying national security must come first. Well, the capital has turned into a fortress ahead of the Congress Janata Party's proposed protest at Jantar Mantar tomorrow. Delhi police maintains that no permission has been given as a request that was sought at the last moment. More than 23,000 police and paramilitary personnel have been deployed across the capital. Multi-layered barricading is also in place. Border entry points have also been put on alert. Meanwhile, 57 metro stations have been shut across Delhi. There are several trains arriving at 2 major railway stations, New Delhi and Nizamuddin, between 4 a.m. and 2 p.m., which also have been cancelled. We have a reaction coming in on that note on the shutdown in Delhi. Let's listen in to some of them.
11: चीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जॉइंट सीपी नूपुर प्रसाद जी मौजूद हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। मैम, हमने देखा सीजेपी की तरफ से कल के प्रोटेस्ट को लेकर के इंटीमेट किया गया था दिल्ली पुलिस को, परमिशन मांगी गई थी कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना है, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने जो परमिशन है वो डिनाई कर दिया है।
12: उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी और ये इंटीमेट किया था कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं जंतर मंतर पर 10 तारीख को। ये जो प्रोटेस्ट की एप्लीकेशन है, जो इंटीमेशन है, उसको देखा गया और पाया गया कि वो इस्टेब्लिश्ड हमारी जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत नहीं है और ये बहुत ही अल्प समय हमें दे करके इन्होंने प्रोटेस्ट की एक एप्लीकेशन डाली है। इसके बावजूद इनका जब ये एप्लीकेशन पर गौर किया गया तो पाया गया कि इन्होंने इनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, जहाँ इन्होंने इनका जो कंडक्ट पूरी तरीके से नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉफुल डायरेक्शन था और अपने ही जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी उसको भी इन्होंने कंप्लाई करने से मना ही कर दिया था। इन सब के अलावा जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और पब्लिक सेफ्टी है, इसके मद्देनज़र इस जो एप्लीकेशन आई है उसमें अनुमति नहीं दी जा रही है।
13: गंभीर ने आप ऐसा कैसे कह सकते हो? इमरजेंसी में कभी रेलवेज बंद नहीं हुई थी, इस सरकार ने रेलवेज बंद कर दिए हमारे आंदोलन से पहले, और ज्ञानेश कुमार इतना जरूरी क्यों है आपको? इससे साफ पता चल रहा है कि तो राजा की जान, क्या कहते हो, तोते में किसकी जान, हाँ तोते में, तो ज्ञानेश कुमार वो तोता है, जिसको पकड़ेंगे तो राजा भी चला जाएगा।
14: कल हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर का, उसके लिए कल सुबह मैं मुंबई से दिल्ली के लिए निकलूंगा। तो कल सुबह लैंड होने के बाद दिल्ली में मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं, क्या मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया जाता है या उसके बाद अरेस्ट कर लिया जाता है, आई एम रियली नॉट श्योर। लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं डरने नहीं वाला हूँ, क्योंकि हमें हमारे देश का लोकतंत्र बचाना है, हमें हमारी डेमोक्रेसी बचानी है। सो मेरी बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर इन केस मुझे डिटेन कर लिया जाता है या इन केस मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसका मुझे कोई डर नहीं है।
15: हम एक युवा वाला मूवमेंट है, यूथ मूवमेंट है ना, हम लोग अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं कि अगर हमारा वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है हम लोगों से, अगर इलेक्शंस का कोई महत्व नहीं बच रहा है इस देश में, अगर युवाओं को वोटर बनने से रोका जा रहा है 2024 से, जेन ज़ी का वोटर लिस्ट में ऐड करने से रोका जा रहा है, तो ऐसा सिस्टम नहीं चल सकता है। इसीलिए हम लोग एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे हैं 10 तारीख से दिल्ली में, और जो जंतर मंतर है वो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट में अगर आप ही बोलते हो कि वहीं पे हो सकता है प्रोटेस्ट, कहीं और नहीं हो सकता है, तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि हम लोग जंतर मंतर जाए, लेकिन तब भी हम लोग को रोका जा रहा है जंतर मंतर जाने से।
10: Moving on, it's the India Bloc versus the CEC, and the India Bloc this time has taken its fight against the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar to the President. Led by Rahul Gandhi, opposition MPs marched to Rashtrapati Bhavan, where a delegation met the President and submitted a memorandum seeking Gyanesh Kumar's resignation. The Bloc has also demanded the suspension of SIR, restoration of deleted voters, a return to the paper ballots, and action over its elections it alleges were stolen. Rahul Gandhi says that the opposition will approach the Chief Justice of India on Monday, claiming it has evidence of electoral manipulation.
16: She accepted our statement and then she said to us that we need to bring her proof of election chori. I said that the proof of election chori is known to the whole country. State after state has been stolen. 24 election, as you know, has been stolen. This same group of people will very happily take the proof of election chori that we have collected to the President of India when she is ready to accept it.
17: Rahul Gandhi aur unke netrutv mein Indi Gathbandhan ke neta जो पिछले कई दिनों से अनर्गल निराधार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यह कहना कि

0: session start. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am now travels to Hyderabad. A new course, a new contest, a new set of conversations, where the finest in golf meet some of the sharpest minds in business. NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, the course of champions, the conversation of leaders. 10th October, the Hyderabad Golf Club.
1: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
2: कौन देखेगा फिर फिल्में?
3: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
4: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
0: ITW presents NDTV Yuva 2026.
5: Welcome to the second edition of the NDTV World India Japan Summit.
6: Deep localization. What does it essentially mean for Maruti Suzuki?
7: To be competitive and to be agile for development and the resilience to any disruption. So that's how we set this deep localization as our next challenge.
8: How do you see the India-US relationship prosper?
9: I think God was an important basis. When people talk about God, they forget that it was an economic bonding. If you take a look at what happened around the COVID, the combination of these four countries and the way it went about, it was not a defense relationship.
8: Abe spoke about India and Japan having not only the ability but also the responsibility to shape the region.
10: Both nations, India and Japan, must work harder still to carry the torch of some of the basic fundamental values to shape the world to come.
8: How would you see India and Japan in particular want to see God evolve over the next decade?
11: God could be a catalyst rather than just a forbinger. God could be a facilitator of growth, security and development in the region. Then Quad will have more meaning to its.
12: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Avasthi. Let's begin with the headlines that we're tracking at this hour. TVK wins big in Dharapuram bipole and secured a commanding victory in Madhurantakam, marking a strong showing in its first assembly bipole test. Vijay calls it win of dignity and civility. Stalin, meanwhile, says that cinematic charisma will not be enough. The BJP has scored a double victory in West Bengal's Nandigram and Rejinagar bipoles, with Hansi Rani Rath securing the highest victory margin in Nandigram since 1967. In Rejinagar, where around 70% of the voters belong to minority communities, the BJP candidate defended his nearest rival by 70,000 votes. JNU sacks Congress MP Akoi Jam after panel recommends major punishment in the sexual misconduct case. Ahead of the CJP protest at Jantar Mantar demanding Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's resignation, mobile internet services have been suspended within a 4-kilometer radius of Janpath Kartavya Path crossing from tonight till 10 p.m. on October 10th. The Trump administration has suspended green card labor certification filings for 8 companies, including Indian IT majors like TCS, Infosys, Wipro, etc. The United States government alleges misuse of employment-based immigration system and says that the move aims to protect American workers. Former Union Minister Rajiv Chandrasekhar has responded to Elon Musk's criticism over Starlink's delayed commercial launch in India, saying national security must come first. Well, the capital has turned into a fortress ahead of the Congress Janata Party's proposed protest at Jantar Mantar tomorrow. Delhi police maintains that no permission has been given as a request that was sought at the last moment. More than 2,000 More than 23,000 police and paramilitary personnel have been deployed across the capital. Multi-layered barricading is also in place. Border entry points have also been put on alert. Meanwhile, 57 metro stations have been shut across Delhi. There are several trains arriving at two major railway stations, New Delhi and Nizamuddin, between 4 a.m. and 2 p.m., which also have been cancelled. We have a reaction coming in on that note on the shutdown in Delhi. Let's listen in to some of them.
13: चीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जॉइंट सीपी नूपुर प्रसाद जी मौजूद हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। मैम, हमने देखा सीजेपी की तरफ से कल के प्रोटेस्ट को लेकर के इंटीमेट किया गया था दिल्ली पुलिस को, परमिशन मांगी गई थी कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना है, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने जो परमिशन है वो डिनाई कर दिया है।
14: उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी और ये इंटीमेट किया था कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं जंतर मंतर पर 10 तारीख को। ये जो प्रोटेस्ट की एप्लीकेशन है, जो इंटीमेशन है, उसको देखा गया और पाया गया कि वो एस्टैब्लिश्ड हमारी जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत नहीं है और ये बहुत ही अल्प समय हमें दे करके इन्होंने प्रोटेस्ट की एक एप्लीकेशन डाली है। इसके बावजूद उनका जब ये एप्लीकेशन पर गौर किया गया तो पाया गया कि इन्होंने इनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, जहाँ इन्होंने इनका जो कंडक्ट पूरी तरीके से नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉफुल डायरेक्शन था और अपने ही जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी उसको भी इन्होंने कंप्लाई करने से मना ही कर दिया था। इन सब के अलावा जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और पब्लिक सेफ्टी है, इसके मद्देनज़र इस जो जो एप्लीकेशन आई है उसमें अनुमति नहीं दी जा रही है।
15: गंभीर ने आप ऐसा कैसे कह सकते हो? इमरजेंसी में कभी रेलवेज बंद नहीं हुई थी, इस सरकार ने रेलवेज बंद कर दिए हमारे आंदोलन से पहले, और ज्ञानेश कुमार इतना जरूरी क्यों है आपको? इससे साफ पता चल रहा है कि तो राजा की जान, क्या कहते हो, तोते में किसकी जान, हाँ तोते में, तो ज्ञानेश कुमार वो तोता है, जिसको पकड़ेंगे तो राजा भी चला जाएगा।
16: कल हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर का, उसके लिए कल सुबह मैं मुंबई से दिल्ली के लिए निकलूंगा, तो कल सुबह लैंड होने के बाद दिल्ली में मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं, क्या मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया जाता है या उसके बाद अरेस्ट कर लिया जाता है, आई एम रियली नॉट श्योर। लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं डरने नहीं वाला हूँ, क्योंकि हमें हमारे देश का लोकतंत्र बचाना है, हमें हमारी डेमोक्रेसी बचानी है। सो मेरी बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर इन केस मुझे डिटेन कर लिया जाता है या इन केस मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसका मुझे कोई डर नहीं है।
17: हम एक युवा वाला मूवमेंट है, यूथ मूवमेंट है ना, हम लोग अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं कि अगर हमारा वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है हम लोगों से, अगर इलेक्शंस का कोई महत्व नहीं बच रहा है इस देश में, अगर युवाओं को वोटर बनने से रोका जा रहा है 2024 से, जेंजी का वोटर लिस्ट में ऐड करने से रोका जा रहा है, तो ऐसा सिस्टम नहीं चल सकता है। इसीलिए हम लोग एक शांति

0: within a 4-kilometer radius of Janpath Kartavya Path crossing from tonight till 10 p.m. on October 10th. The Trump administration has suspended green card labor certification filings for 8 companies, including Indian IT majors like TCS, Infosys, Wipro, etc. The United States government alleges misuse of employment-based immigration system and says that the move aims to protect American workers. Former Union Minister Rajiv Chandrasekhar has responded to Elon Musk's criticism over Starlink's delayed commercial launch in India, saying national security must come first. Well, the capital has turned into a fortress ahead of the Congress Janata Party's proposed protest at Jantar Mantar tomorrow. Delhi police maintains that no permission has been given as a request that was sought at the last moment. More than 23,000 police and paramilitary personnel have been deployed across the capital. Multi-layered barricading is also in place. Border entry points have also been put on alert. Meanwhile, 57 metro stations have been shut across Delhi. There are several trains arriving at 2 major railway stations, New Delhi and Nizamuddin, between 4 a.m. and 2 p.m., which also have been cancelled. We have a reaction coming in on that note on the shutdown in Delhi. Let's listen in to some of them.
1: चीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जॉइंट सीपी नूपुर प्रसाद जी मौजूद हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। मैम, हमने देखा सीजेपी की तरफ से कल के प्रोटेस्ट को लेकर के इंटीमेट किया गया था दिल्ली पुलिस को, परमिशन मांगी गई थी कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना है, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने जो परमिशन है वो डिनाई कर दिया है।
2: उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी और ये इंटीमेट किया था कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं जंतर मंतर पर 10 तारीख को। ये जो प्रोटेस्ट की एप्लीकेशन है, जो इंटीमेशन है, उसको देखा गया और पाया गया कि वो एस्टैब्लिश्ड हमारी जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत नहीं है और ये बहुत ही अल्प समय हमें दे करके इन्होंने प्रोटेस्ट की एक एप्लीकेशन डाली है। इसके बावजूद इनका जब ये एप्लीकेशन पर गौर किया गया तो पाया गया कि इन्होंने इनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, जहाँ इन्होंने इनका कंडक्ट पूरी तरीके से नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉफुल डायरेक्शन था और अपने ही जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी उसको भी इन्होंने कंप्लाई करने से मना ही कर दिया था। इन सब के अलावा जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और पब्लिक सेफ्टी है, इसके मद्देनज़र इस जो एप्लीकेशन आई है उसमें अनुमति नहीं दी जा रही है।
3: गंभीर ने आप ऐसा कैसे कह सकते हो? इमरजेंसी में कभी रेलवेज बंद नहीं हुई थी, इस सरकार ने रेलवेज बंद कर दिए हमारे आंदोलन से पहले, और ज्ञानेश कुमार इतना जरूरी क्यों है आपको? इससे साफ पता चल रहा है कि तो राजा की जान, क्या कहते हो, तोते में किसकी जान, हाँ तोते में, तो ज्ञानेश कुमार वो तोता है, जिसको पकड़ेंगे तो राजा भी चला जाएगा।
4: कल हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर का, उसके लिए कल सुबह मैं मुंबई से दिल्ली के लिए निकलूंगा। तो कल सुबह लैंड होने के बाद दिल्ली में मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं, क्या मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया जाता है या उसके बाद अरेस्ट कर लिया जाता है, आई एम रियली नॉट श्योर। लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं डरने नहीं वाला हूँ, क्योंकि हमें हमारे देश का लोकतंत्र बचाना है, हमें हमारी डेमोक्रेसी बचानी है। सो मेरी बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर इन केस मुझे डिटेन कर लिया जाता है या इन केस मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसका मुझे कोई डर नहीं है।
5: हम एक युवा वाला मूवमेंट है, यूथ मूवमेंट है ना, हम लोग अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं कि अगर हमारा वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है हम लोगों से, अगर इलेक्शंस का कोई महत्व नहीं बच रहा है इस देश में, अगर युवाओं को वोटर बनने से रोका जा रहा है 2024 से, जेंजी का वोटर लिस्ट में ऐड करने से रोका जा रहा है, तो ऐसा सिस्टम नहीं चल सकता है। इसीलिए हम लोग एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे हैं 10 तारीख से दिल्ली में, और जो जंतर मंतर है वो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट में अगर आप ही बोलते हो कि वहीं पे हो सकता है प्रोटेस्ट, कहीं और नहीं हो सकता है, तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि हम लोग जंतर मंतर जाए, लेकिन तब भी हम लोग को रोका जा रहा है जंतर मंतर जाने से।
0: Moving on, it's the India block versus the CEC, and the India block this time has taken its fight against the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar to the President. Led by Rahul Gandhi, opposition MPs marched to Rashtrapati Bhavan, where a delegation met the President and submitted a memorandum seeking Gyanesh Kumar's resignation. The block has also demanded the suspension of SIR, restoration of deleted voters, a return to the paper ballots, and action over its elections it alleges were stolen. Rahul Gandhi says that the opposition will approach Chief Justice of India on Monday, claiming it has evidence of electoral manipulation.

0: फोन उठाओ और कंटेंट बनाना शुरू करो।
1: कौन देखेगा फिर फिल्में?
2: अगर आप पान गुटखा एडवर्टाइज कर रहे हो तो पहले आप खाओ ना।
3: की जिम्मेदारी सिर्फ बीएमसी की नहीं है।
4: ITW presents NDTV Yuva 2026. This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: India, saying national security must come first. Well, the capital has turned into a fortress ahead of the Kokra Janata Party's proposed protest at Jantar Mantar tomorrow. Delhi police maintains that no permission has been given as a request that was sought at the last moment. More than 23,000 police and paramilitary personnel have been deployed across the capital. Multi-layered barricading is also in place. Border entry points have also been put on alert. Meanwhile, 57 metro stations have been shut across Delhi. There are several trains arriving at two major railway stations, New Delhi and Nizamuddin, between 4 a.m. and 2 p.m., which also have been cancelled. We have a reaction coming in on that note on the shutdown in Delhi. Let's listen in to some of them.
1: चीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जॉइंट सीपी नुपुर प्रसाद जी मौजूद है, सीधा उनके पास चलेंगे। मैम, हमने देखा सीजेपी की तरफ से कल के प्रोटेस्ट को लेकर के इंटीमेट किया गया था दिल्ली पुलिस को, परमिशन मांगी गई थी कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना है, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने जो परमिशन है वो डिनाई कर दिया है।
2: उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी और ये इंटीमेट किया था कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं जंतर मंतर पर 10 तारीख को। ये जो प्रोटेस्ट की एप्लीकेशन है, जो इंटीमेशन है, उसको देखा गया और पाया गया कि वो इस्टेब्लिश्ड हमारी जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत नहीं है और ये बहुत ही अल्प समय हमें दे करके इन्होंने प्रोटेस्ट की एक एप्लीकेशन डाली है। इसके बावजूद इनका जब ये एप्लीकेशन पर गौर किया गया तो पाया गया कि इन्होंने इनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, जहाँ इनका जो कंडक्ट पूरी तरीके से नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉफुल डायरेक्शन था और अपने ही जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी उसको भी इन्होंने कंप्लाई करने से मना ही कर दिया था। इन सब के अलावा जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और पब्लिक सेफ्टी है, इसके मद्देनज़र इस जो एप्लीकेशन आई है उसमें अनुमति नहीं दी जा रही है।
3: आर गंभीर ने, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? इमरजेंसी में कभी रेलवेज बंद नहीं हुई थी, इस सरकार ने रेलवेज बंद कर दिए हमारे आंदोलन से पहले, और ज्ञानेश कुमार इतना जरूरी क्यों है आपको? इससे साफ पता चल रहा है कि तो राजा की जान, क्या कहते हो, तोते में किसकी जान, हाँ तोते में, तो ज्ञानेश कुमार वो तोता है, जिसको पकड़ेंगे तो राजा भी चला जाएगा।
4: कल हमारा मार्च होने जा रहा है जंतर मंतर का, उसके लिए कल सुबह मैं मुंबई से दिल्ली के लिए निकलूंगा। तो कल सुबह लैंड होने के बाद दिल्ली में मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं, क्या मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया जाता है या उसके बाद अरेस्ट कर लिया जाता है, आई एम रियली नॉट श्योर। लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं डरने वाला हूँ, क्योंकि हमें हमारे देश का लोकतंत्र बचाना है, हमें हमारी डेमोक्रेसी बचानी है। सो मेरी बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर इन केस मुझे डिटेन कर लिया जाता है या इन केस मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसका मुझे कोई डर नहीं है।
5: हम एक युवा वाला मूवमेंट है, यूथ मूवमेंट है ना, हम लोग अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं कि अगर हमारा वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है हम लोगों से, अगर इलेक्शंस का कोई महत्व नहीं बच रहा है इस देश में, अगर युवाओं को वोटर बनने से रोका जा रहा है 2024 से, जेंजी का वोटर लिस्ट में ऐड करने से रोका जा रहा है, तो ऐसा सिस्टम नहीं चल सकता है। इसीलिए हम लोग एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे हैं 10 तारीख से दिल्ली में, और जो जंतर मंतर है वो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट में अगर आप ही बोलते हो कि वहीं पे हो सकता है प्रोटेस्ट, कहीं और नहीं हो सकता है, तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि हम लोग जंतर मंतर जाए, लेकिन तब भी हम लोग को रोका जा रहा है जंतर मंतर जाने से।
0: Moving on, it's the India Bloc versus the CEC, and the India Bloc this time has taken its fight against the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar to the President. Led by Rahul Gandhi, opposition MPs marched to Rashtrapati Bhavan, where a delegation met the President and submitted a memorandum seeking Gyanesh Kumar's resignation. The Bloc has also demanded the suspension of SIR, restoration of deleted voters, a return to the paper ballots, and action over its elections it alleges were stolen. Rahul Gandhi says that the opposition will approach the Chief Justice of India on Monday, claiming it has evidence of electoral manipulation.
6: She accepted our statement and then she said to us that we need to bring her proof of election chori. I said that the proof of election chori is known to the whole country. State after state has been stolen. 24 election, as you know, has been stolen. This same group of people will very happily take the proof of election chori that we have collected to the President of India when she is ready to accept it.
7: Rahul Gandhi aur unke netrutv mein Indi Gathbandhan ke neta jo pichle kai dinon se anargal niradhar प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, ये दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी। परंतु जिस समय राहुल गांधी ये बोल रहे थे, उनके साथ खड़े हुए नेताओं की भावभंगिमा और उनके चेहरे के भाव ये साफ परिलक्षित कर रहे थे कि जो बोला जा रहा है संभवतः सच से उसका कोई सरोकार नहीं है।
0: And moving on to the other stories that we are tracking, and this one is from the state of Tamil Nadu, where bipoll result came out today. Vijay's party had a major sweep in both the constituencies. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay has in fact called the TVK's bipoll win a victory for democracy and people and political civility as well. He claims that voters rejected money and power, personal attacks, taking a swipe at the DMK. But these wins mean much more than the two seats. Here's why these bipolls matter for the TVK, DMK and the AIADMK. Well, the TVK has won two seats previously held by the AIADMK, taking its tally to 109, just 9 short of a majority. It's a key test of Vijay's 4-month governance and signals a possible TVK-DMK contest. Now, the DMK finishes second, setting the stage for a more personal Vijay versus Udayanidhi battle. For the AIADMK, two losses raise question over EPS's leadership and the risk of further defections. But caste equations, the TVK's appeal among traditional AIADMK voters and its support among the Supreme SC voters remain the key question. With 5 more bipolls ahead, the big question is whether TVK can sustain this momentum. And for the DMK, the challenge is clear. AIADMK voters appear to be shifting to Vijay, making opposition unity extremely harder.
8: 2026, even 2026 election, nobody predict, even particularly in the media and the opposition parties. But we believed, particularly everyone claimed our party is a Gen Z and a youth party. No, our party is a woman-based party. Woman and youth gave a revolution in the 2026 result. So right now our Honorable CM, Mr. C. Joseph Vijay Annavargal, whatever the commitments, particularly our election campaign and manifesto, the Tamil Nadu always an ideological force state, particularly secularism and social justice. So our CM, we are the government, always focused secular and social justice ideological government. Also,
9: it's a victory for the alliance. It's a victory for good governance. Mr. Vijay's leadership. This both the Tharapuram and Madurandaham victory has come. The secular social justice victory alliance has won. Tamilaga Vetri Kalagam candidates has won. For we congratulate Chief Minister Mr. Vijay for the victory, and all other leaders who have campaigned for the candidate also. We want to thank all of them, and it's a new direction Tamil Nadu is moving.
0: All right, now let's tell you about a bipoll that was held in West Bengal as well, where there were two constituencies for which bipoll was held. One was Nandigram and the other was Rajinagar Assembly bipolls, and this was held in West Bengal. Now remember, BJP here has secured a clear win in both the constituencies. BJP workers were seen celebrating in Nandigram, where the party's candidate was leading by 1 lakh votes earlier, and then it secured a major leap. Now in Rajinagar, the BJP was also ahead by a large margin, and hailing the lead by BJP, West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari said that the pro-nationalist forces were winning the bipolls, and finally the results were out. Now the bipolls marked the BJP's first electoral win since coming to power in West Bengal in May. We have a couple of reactions on this story as well. Let's listen to some of them.
10: কারণ উনি একটা সময় 70% এর দম্ভ দেখিয়েছিলেন। সেই 70% একটা বড় অংশ আজকে তো ভোট দিল ভারতীয় জনতা পার্টি। এইসব র্যাডিক্যালিজম পশ্চিমবাংলায় চলে না। এটা ১৯৪৭ এর ২০ জুন বাঙালি